भौस्या मोहे शंकर।

नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सी।

बाजते लक हो गाओ हो मन से भजलू रे हरी तन से भजलू रे हरी राम नाम है जग में।

जग में साथी भज लो रे हरि। आसाराम कहत हैं भाई।

盖开的家，लेकिन बोझे सब चढ़ाते अटरी जा।

ಬರ್ಬೇಕಾರೆ

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो

व्यूओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केंचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे भैरव भौजी का जो किरदार है जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, भैरवभौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को।

फल बातों का ना चबाओ ना, गंदे फल बातों का ना चबाओ ना, पिया प्रदूषण।

तुम्हारी, ध्यान से समझो नर और नारी सबकी।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लाला जी, आज तो बगल में रेडियो रखे हो, जो लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रहे, तुम बताओ क्या कर रहे हैं? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लाला जू, का जा रहे थे ना, एक महीने की बजा रहे हुए हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हैं?
2: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो हो कित नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी ले लो, तो कितम की नीयत ना घर की ना घाट की।
1: का कह रहे हैं लाला जू? आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गए कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
1: सो बास का कह रहे लाला जू? घर को पत्ता, घर को ना घाट को।
2: अरे बा काना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो जो जो काम कर रहे हैं, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
2: हाँ, तो अब हमने बात सुनी तो है नहीं, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बना भी हम।
1: ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लाला जी?
2: अब बस भौजी तनक एक संग दूसरा काम करत जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे, बड़ी बता तो इन्हो नहीं तरह से रहे थे, लेकिन हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लाला जी, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो ने बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी तुम केवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़िया ने देख रहे हो?
1: मैं तो यही कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बाँ में ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन पाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बना ही लीजिए।
1: हाँ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब आते है वो, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे हैं भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो करा ही लो।
1: लाला जी तुम तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: काय भौजी जब काम करे तो बढ़ना जी, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को दिख भर गए जैसे मन जाने कब पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुनो कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाते।
1: का कह रहे लाला जू? दूध में मिला मिला के पियो तो अच्छा हो जाते।
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई मिलोच से, तो हमने की इतना भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा
2: अच्छा अच्छा,
1: क्या कह रहे लाला जू? चाटा खल जे, मैं देखा तुम्हें ये हो गई तुम्हारी अभी।
2: अरे भौजी तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जाए, तो मैंने कही सुगाटा से बन जाए तो दिखाए कैसे चाटा को मारा तुम्हें।
1: अच्छा तुम्हें देखती है।

0: सुनाते है इतनी देर कहते है मैं कौन बिहारी हूँ।
1: लालाजू
0: कछुनी जबकि ऐसी कह रहे थे कि बता दो करूँ काम है, समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू चलो मैं ही बता दे थूंगी, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
0: अब लेकिन तू भोजी जाने दो ते सज के तो ठाड़ी है।
1: का कह रहे लालाजू तू उते जाने हैं?
0: हाँ उते तो ठाड़ी सजी।
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए दे थू।
0: अरे मैं सब जाना आई हूँ जी, मुई ने सज बज के बात है मारे झूठी झूठी।
1: का कह रहे लालाजू झूठी कह रही?
0: अरे भोजी कछुनी अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बता दे थूंगी, अब मुझे जाने होते हैं, टेम हो रहा है वो तो देखो। अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लाइए, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
0: अच्छा अमृत जल बनाने आओ?
1: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने आओ। वो कैसे बना थे?
0: हाँ
1: वो जो गैया को गोबर हो ले लो
2: ठीक है,
1: और ले लो गोबर ले लो है, और एक सड़ो गड़ो फल हो तो अपना चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
0: अच्छा
1: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कह देना के लाने तीन दिन के लाने ठीक है लालाजू। आ रही समझ में?
0: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से आ जा रही।
1: का कह रहे लालाजू ने कम तरीका से आ रही?
0: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिन के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत भाई एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे, कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब, तो बस चमचा को ऐसो घुमाने।
0: कब जी कब हड़िया को मुन्ने जो करने के ऊपर करने?
1: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जारत के वहाँ में गुठला ना पड़ जाए, सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
0: अच्छा ईलंग और उलंग
1: सुबह एक ही मिल जाए तीन दिन में, फिर उके बाद लालाजू हो तुम्हें जो करने के पर्दे बनाने वो बन गो अपनो जल जल बन गो। अब वो बनाने पर अमृत मिट्टी उके लाने तुम्हें जो करने पड़े कि एक खेत में जित एक तुम्हें बनाने उतेक में तुम पहले मट्टी बिछाओ, जैसे इतनी सी परत पे मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो देख बनाने, तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले उके ऊपर गोबर बिछा दे, फिर उके ऊपर पानी लगा अमृत पानी लगातार के छट जाने ठीक है लालाजी।
0: अच्छा
1: हाओ और फिर उके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे,
0: फिर से मट्टी बिछा दे।
1: हाओ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गंज में भैसन को तो उके ऊपर बिछा दो बाकी। आ रही?
0: हाँ आ रही है।
1: फिर उके ऊपर फिर मट्टी बिछा दो है, और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की में
0: 10 प्रकार की बीज लेने
1: हाओ टैंके हूँ बाजरा मटर सब ले लो और उमे भी बे दू और पानी लगातार किन छत जाओ ठीक है, फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे आए भी वो लालाजू एक और करने वो जो अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
3: पत्ता मत्ता
1: डालने ठीक है, डालने के बाद उमे अपन को लालाजू तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात,
0: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
1: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दू।
0: अच्छा हूँ का देने आए, अब मैं तो ये सब देखा जा रहा और करत भी जा रहा हूँ।
1: तो ठीक है सो उके बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है।
0: अच्छा
1: हाओ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो, और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए सुबह पूरी छोटी छोटी करके काट लो और उको फिर से वही में मिला दो,
0: तो फिर बन गई मट्टी।
1: फिर उको वहाँ फिर उको फरुआ लेके मिक्स कर लो।
0: अच्छा
1: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं कछु लगा रहे वह फेंका जाओ किन छत जाओ वह डाल दो, तो वो एक अपनो रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाँ में मिल रहा है, जैसे साथी इनकी कहावत रहे बाँ में रासायनिक बाँ में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं, तो ई में भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है ई में।
0: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुन नहीं थी बातें, अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
1: हाँ तो ई में 2-3 चीजें जो फायदा की है, एक तो ई से अपनो स्वास्थ्य सही रहेगो है लालाजू, और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगो लालाजू। हो देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मेयो कछु में तो अपनो मोह है जो मियो तो मोह प्राल लगो बतात बतात।
0: अरे भौजी तो करने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता
1: है।

0: आजो 2000 की बपोर यार ही रासायनिक खाद की भाई है आजो काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के या कोई तुम तो ना कर रहे थे नेक सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
1: अरे भौजी आप तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले आप तो।
0: हाँ तो लाला जू मैं चली
1: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाओ और जरूर अपने पर्यावरण को बचाओ।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल

0: बंगाल के पौधे बिना बारिश और बिना
1: जलवायु
0: अतिरिक्त
1: परिवर्तन
0: बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली
1: तैयार
0: रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो खरपतवार जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत ये है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अच्छा। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि हमको बार बार पानी की किसी भी फसल में बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कह भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे आपको सिंचाई देर से कम देनी पड़ती है। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहाँ पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। अच्छा। या अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले सकते हैं।
1: और
0: क्या और ये तो और भी अच्छी बात है कि किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है
2: जी।
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो भी काफी अच्छी हो जाती है और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है।
2: अच्छा।
0: तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

0: खंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं। तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9219207749। श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकाल कर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहें तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीके जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम शुभकल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम शुभकल से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभकल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम। शुभकल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
0: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों हम होंगे कामयाब में, हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
0: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में, और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचो, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ही प्यारे से लोकगीत खो जी खो गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चले थेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उसके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: नमस्ते नंदिनी जी।
3: नमस्ते
2: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
3: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूं। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
3: तो एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन बट की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करे, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
2: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
3: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
3: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही, तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
3: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है, हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स।

0: है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं, आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी, और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके, हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो दे व्हेन दे विल रीड अबाउट इट, तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट एंड ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं, सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
1: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
0: कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोस एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए, और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो ऐसे तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए, एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
1: शुक्रिया नंदिनी जी।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: अपनो रेडियो अपनी बात है, साथी हरो भैया हरो, अपन अभय सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को, जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है वो। अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी भई बातचीत तो अपन शुभ कल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी शुभ कल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुभ कल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुभ कल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उमे भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उमे भी सफल भई हैंगी। यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में। आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आते हैं तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी भई कहानी आप सबको सुनवावे।
4: वर्षा हमें भी लगा थे गो के नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो, और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे, और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो। कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे, वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करोगा हो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओगा हो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो 100 गांवों में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खास तौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने कुछ संदेश आप भी दो।
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जो तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसाने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरा रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होती उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे। जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हैंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में। सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है को तो सफलता जो मिली हैगी बस रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी।
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी इसके पात्र हकदार होगी, कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो। और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था। और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो, और ख़ास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा ख़ास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितना अच्छा काम करो जा रहा है गो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फ़ोन कर सकत हैंगे, और अगर सबसे ज़्यादा जन के मतलब फ़ोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अब तक को सफ़र आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा 92-19-20-77-49।
3: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो ऐन ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज़्यादा फोकस कर लो है को। सो इन सब चीज़न पे आपको ध्यान नहीं देने हैं, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई हैगी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं, काहे कि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट करते हैंगे अगर अपने साथी भैया सुन के उनमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा करते हैंगे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतना समाप्त हो जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को दो जावे की इजाजत,
3: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
5: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचो, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए।

0: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हो।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम
2: छोटे पर्दे।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक कहानी को हम सुनाते हैं आपके बीच में और हमारा साथ देते हैं मनीष जी। तो मनीष जी, आज हम अपने कार्यक्रम के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि पिछले एपिसोड में हमने प्रवेश कर लिया था और आगे तीसरे अध्याय में क्या होता है इस पर हम और आप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं।
4: जी बिल्कुल, और सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की हम जो एपिसोड बाई एपिसोड आपको कहानी सुना रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और हमको पता नहीं रहता है, और साथ साथ में हम उन छोटी छोटी बातों पर भी एक प्रकाश डाल रहे हैं जो उनसे जुड़ी बातचीत हो। तो अभी तक हमने इस पूरे कार्यक्रम में जाना कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होने के बाद जब महाराज जी का देहांत हो जाता है तो अब उनके हाथ में जो कमान रहती है और झांसी की बागडोर रहती है उस पर किस तरीके से खरी उतरती है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजों के शासन के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी झांसी में कि वहां पर शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने धैर्य का परिचय देते हुए और उस झांसी पर अपनी परचम लहराया और साथ साथ में ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना कब्जा किया और ग्वालियर के

0: इंग्लैंड की पार्लियामेंट सभा में विचार करते समय यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में अपने राज्य का विस्तार करने या वहां का देश अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करना ब्रिटिश राजनीति और इसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ने लिखा है कि हमारे नूतन प्राप्त राज्य की मर्यादा इतनी विस्तृत है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का विचार करते हैं तब आयन बनाने वालों की इस उस गंभीर सूचना की बुद्धिमत्ता और आवश्यकता हमारे मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती है, जिससे यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति या राज्य विस्तार का काम करना ब्रिटिश राजनीति इज्जत और इच्छा के विरुद्ध है। परंतु यह निश्चित 6 वर्ष से अधिक समय तक न ठहरने पाए। सन 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर चढ़ाई की और इसका आधा राज्य हस्तगत कर दिया था। फिर 6 वर्ष के बाद सन 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेल इसने ने टीपू सुल्तान का सारा राज्य ही अपने अधीन कर लिया।
1: थोड़े ही दिनों के बाद कर्नाटक प्रांत और अवध के नवाब से लिया हुआ प्रांत अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बहुत संतोष हुआ, परंतु अल्प समय में ही उनके राज्य की मर्यादा बहुत बढ़ जाने के कारण उन्होंने घबराकर पुनः निश्चय किया कि अब हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति का कोई प्रयत्न न किया जाए। अल्प ऑफ मोइरा के गवर्नर जनरल होते ही नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत बड़ा प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया। तत्पर यह कि ब्रह्मदेश, आसाम, कुर्क, सिंध, पंजाब आदि बड़े बड़े प्रदेश क्रमश अंग्रेजी अमलदारी में शामिल हो गए। जब लॉर्ड डलहौजी सन 1847 ईस्वी में यहां आए, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि जो देसी रियासतें लावारिस होती जाएं, वे ब्रिटिश राज्य में शामिल कर ली जाया करें और जिन रियासतों को दत्तक लेने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है उनको लावारिस समझकर ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लेना चाहिए। इस विषय में उनका जो मत था वह उन्होंने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया,
0: मैं किसी के लिए यह संभव नहीं समझता कि वह इस राजनीति पर कोई आपत्ति कर सके कि जो प्रदेश पहले ही से अपने कब्जे में है उसके बीच में यदि कोई ऐसी छोटी छोटी रियासतें हों जो लावारिस हो गई हों, उन्हें अपने कब्जों में लेकर उचित अवसर आ पड़ने पर अपने मुल्क का विस्तार बढ़ाया जाए, उसकी उन्नति की जाए। इन छोटी छोटी रियासतों में हम लोगों को सिर्फ तकलीफ ही मिल सकती है। मेरी समझ में ये हमारे राज्य की मजबूती का कारण हो नहीं सकता, अतएव उनको अपने राज्य में मिला लेने से इनसे होने वाली तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमारे खजाने की बढ़ती भी हो सकेगी। ऐसा करने से उन रियासतों को हमारी राज्य प्रणाली का लाभ अवश्य होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इसी में उन रियासतों की हर तरह की भलाई है। यह मेरी पक्की और विचार पूर्वक निश्चित राय है कि अपनी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति से काम लेने से अंग्रेजी गवर्नमेंट का आवश्यकता कर्तव्य है कि मुल्क लेने में या आमदनी बढ़ाने के ऐसे उचित मौकों को आप समय समय पर हाथ आवे कभी ना छोड़ना चाहिए। ऐसे मौके चाहे इस समय पैदा हो कि रियासत किसी भी किस किस्म का हो, कोई बारिश ना हो, चाहे इस तरह की असली बारिश ना होने से अंग्रेज सरकार के इजाजत देने पर हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेकर कोई वारिस बनाया जा सकता है। उन दिनों मौकों को हाथ से निकल जाने देने की भूल कदापि ना करना चाहिए।
1: जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उसी समय गवर्नर

0: जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए हुए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश यह था, इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराज भाऊ ने सरकारी जो सहायता की थी वह झांसी के दफ्तर से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी उससे हमारा सदा कल्याण हुआ है। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराज गंगाधर राव के साथ कर्नल सलीमन साहब ने जो संधि की थी उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गईं, किंतु यह वचन दिया गया था कि वे सब शर्तें पूर्वता पाली जाएंगी और होने वाले सब फायदे झांसी राज्य को प्राप्त होंगे। शिवराव भाऊ के सौजन्य पूर्णता बर्ताव और ब्रिटिश सरकार के संबंध में उनके हृदय के अटल प्रेम की ओर ध्यान देकर उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी कि झांसी का राज्य रामचंद्र राव को वंश पर परंपरा के लिए दिया जाए, उसे स्वीकार करने उक्त संधि की गई है। झांसी सरकार का प्रेम भाव और विश्वास दृढ़ करने के हेतु उक्त संधि से यह निश्चित हो चुका है कि रामचंद्र राव उनके वारिस और गद्दी सनी शिवराज भाऊ के राज के वंश परंपरा के स्वामी हैं। इसका अर्थ यही है कि स्वामी में मोक्ष प्रति के हेतु अपने पश्चात उत्तर क्रिया करने के लिए जो दत्तक पुत्र लिया जाएगा उसको ब्रिटिश सरकार मंजूर करे और उसके द्वारा घराने का नाम कायम रखे।
1: हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत पिता को पिंड दान करने और उसकी श्राद्धी क्रिया करने का अधिकार औरस पुत्र के समान दत्तक पुत्र को ही है। इसलिए दत्तक लेने की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। इसी तरीके से इसी रीति के अनुसार हमारे मृत पति ने 16 नवंबर को दीवान नरसिंह राव आपा लाला लाहोरीम तट्टी चंद्र अनेक सज्जनों के सम्मुख मुझे बुलाकर यह कहा गया कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है और अब औषधियों से कुछ लाभ नहीं होता, अतएव गद्दी का वारिस होने के लिए अपने गोत्र के किसी योग्य बालक को हिंदू हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेने का मेरा विचार है।
0: तब उन्होंने रामचंद्र बाबा को बुलवाकर अपने गोत्र के अनेक बालकों में से वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव नामक के 5 वर्ष बालक को पसंद किया। अतः विद्वान पंडितों और शास्त्रियों को बुलवाकर दत्तक विधान किया गया। दूसरे दिन सवेरे पंडित विनायक राव ने संकल्प पढ़ा और आनंद राव के पिता वासुदेव राव बने। यथाविधि पुनः दान किया गया। इस पुत्र का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया और दत्तक विधि समाप्त की गई। महाराज की आज्ञा अनुसार मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन साहब को दत्तक विधि के समय राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसके अनुसार वे दोनों 20 तारीख को 10 बजे राजमहल में आए थे। उस समय हमारे पति ने सरकार की इजाजत हासिल करने के लिए उनको एक खलीता दिया जो वही पर पढ़कर उन्हें सुनाया गया था। मेजर एलिस साहब ने यह वचन दिया था कि महाराज की इच्छा अनुसार हम सरकार को सब हाल सूचित कर देंगे। दूसरे दिन अर्थात सोमवार तारीख 21 नवंबर को हमारे पति का देहांत हुआ। उनका सारा क्रियाक्रम दामोदर राव गंगाधर राव ही ने किया। इस बालक को हमारे पति ने ब्रिटिश सरकार की कृपा के अधीन किया है। अब उसकी रक्षा और पालन का भार उन्हीं पर है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित जालौन के बालाराम और ओरछा के तेज सिंह के लिए हुए दत्तक को सरकार ने मंजूर किया, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपने संधि पत्र में हमेशा शब्द का उपयोग किया गया है। यह शब्द उक्त राजाओं के संधि पत्रों में संयुक्त नहीं हुआ है, अतः उन राजाओं की अपेक्षा दत्तक लेने का हमारा हक अधिक है। यही खलीता गवर्नर जनरल साहब की सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में यह लिखा था कि जिस तरह ओरछा से राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक सा है। ऐसी अवस्था में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे राज्य को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपनी तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में यह स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा हक है। अब यदि यह बहाना किया जाए कि जिन घरानों को ब्रिटिश सरकार ने पूर्व सहायता के बदले राजपद पर चढ़ाया है, वे अन्य घरानों के समान प्राचीन नहीं हैं, और यदि इसी बहाने से उनका कबूल ना किया जाए तो मेरी राय में यह बात डायरेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध और उनकी उदारता का नाश करने के समान है। परंतु यह पत्र बुंदेलखंड के एजेंट दफ्तर में ही बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के प्राचीन निवास स्थान खानदेश के रहने वाले भाई बंधुओं में से सदा शिव राव नारायण नाम के किसी एक मनुष्य ने झांसी का राज पाने के लिए मेजर मालकन साहब को एक प्रार्थना पत्र भेजा। इस प्रार्थना पत्र को गवर्नर जनरल की सेवा में भेजते समय तारीख 31 दिसंबर 1853 ईस्वी को मालकम साहब ने अपनी सिफारिशी चिट्ठी में यह लिखा है
1: कि यदि मृत राजा के पुरखों के किसी वारिस का हक कबूल करना होता है, यह मनुष्य सबसे ज्यादा नजदीकी का रिश्तेदार है जो गद्दी पाने का हकदार हो सकता है। जब सन 1854 ईस्वी के फरवरी महीने में लॉर्ड डलहौजी साहब दौरे से कलकत्ते को लौट आए, तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार ने पर राज्य समधि सचिव मिस्टर जेपी ग्रंट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत ही बड़ी मिसाल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इसी बात पर जोर दिया गया था कि झांसी का राज्य अंग्रेजों राज्य में मिला दिया जाए। इस पर वाद विवाद करके लाट साहब और उनके काउंसलर लोगों ने निश्चय किया कि वह यह है कि झांसी महाराज गंगाधर राव देहांत 1853 ईस्वी नवंबर मास में के अंत में हुआ। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु के दिन पहले एक लड़के को दत्तक लिया। महाराज गंगाधर राव की स्त्री महारानी लक्ष्मीबाई यह प्रार्थना करती है कि भारत सरकार उक्त दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का वारिस कबूल करे। सेक्रेटरी ने झांसी राज्य का जो संक्षिप्त वृत्तांत लिखा है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि ब्रिटिश सरकार और झांसी राज्य का संबंध किस प्रकार का है। इस बात पर विचार पूर्वक ध्यान देकर और झांसी राज्य के साथ पहले से ही जो हमारा पत्र व्यवहार हुआ है उस पर ध्यान देकर मैं इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता हूँ कि झांसी के राजा साहब के अधीन जो प्रांत था उसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए।
0: मेरी यह राय है कि इस प्रांत का स्थित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया है। उस स्थित्व को ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहने देना ही हक और राजनीति की दृष्टि से उचित होगा। जिन सिद्धांतों के अनुसार झांसी राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए उसका पूरा विचार हाल ही में नागपुर और तहरी के राज्यों के संबंध में वाद विवाद करते समय किया जा चुका है। बुंदेलखंड की छोटी छोटी रियासतों के विषय में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ साहब ने जो नियम बतलाया है और जिसको सरकार ने सन 1837 ईस्वी में स्वीकार कर लिया है, उस पर ध्यान देने से और आश्रित राज्यों के विषय में सन 1846 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो नियम निर्धारित किया है उस पर विचार करने से यही निश्चित होता है कि झांसी राज्य को लावारिस समझकर अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का हमको पूर्ण अधिकार है।
1: जिस लेख में उक्त सिद्धांतों का वर्णन है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने यह स्पष्ट रीति से कहा है कि यदि भारतवर्ष में सब साधारण नियम और रूढ़ी के अनुसार जो रियायतें सतारा राज्य के समान स्वतंत्र नहीं हैं, उनका स्वामित्व सार्वभौम सरकार की अनुमति के बिना किसी दत्तक वारिस को प्राप्त नहीं हो सकता। यह इस प्रकार की अनुमति देने के लिए हम प्रत्यज्ञ या अप्रत्यक्ष रीति से किसी प्रकार के वचन से बद्ध नहीं हैं, और जब इस प्रकार की अनुमति दी ना जाएगी तभी ऐसा समझा जाएगा कि हमने अपने कब्जे में आए हुए प्रांत की भलाई की और उचित ध्यान दिया है। बुंदेलखंड राजाओं के विषय में सर चार्ल्स मेटकाफ साहब लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या जिनकी और संतान नहीं है वे दत्तक लेकर अन्य वारसों का हक या जब कोई वारस ना हो तो सार्वभौम सरकार को प्राप्त होने वाला हक मार सकते हैं। क्या सरकार इस प्रकार के दत्तक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? इस प्रश्न का निर्णय करते समय ऐसे राजाओं में जो वंश परंपरागत गद्दी के हकदार हैं और उन जागीरदारों में जिन्होंने उक्त राजाओं से या सार्वभौम सरकार की ओर से जागीर मिली है जो भेद है, उस पर फ्रेजर साहब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरी यह राय है कि यदि हिंदू राजाओं की औरत संतान ना हो तो उन्हें दत्तक लेने का हक है, और ऐसे दत्तक को यदि वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हो तो ब्रिटिश सरकार अवश्य मंजूर करे।
0: अब जिन जागीरदारों को राज्य की ओर से जागीर मिली हो उनके उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार उन्हीं राजाओं को जिन्होंने जागीर प्रदान की थी या जागीर दान की शर्तों के अनुसार उन लोगों को है जिन्होंने युद्ध करके या अन्य किसी तरह से उन जागीरदारों के हक स्वयं अपने अधीन कर लिए हैं। इन शर्तों को खास मतलब यही रहता है कि औरस संतान के सिवा दत्तक पुत्र या अन्य कोई वारिस ना हो। अतः ऐसे मामलों में राजाओं ने जागीर प्रदान की है उन्हें या उनके स्थान में स्थापित होने वाले अन्य राज्य अधिकारियों को यह अधिकार है कि जब कोई जागीर ओर से पुत्र ना होने से लावारिस हो जाए तब वे उसको वापस ले लें। झांसी का राज्य सतारा के समान की बहुना उससे भी अधिक आश्रित है। वह सार्वभौमित्व के नाते से ब्रिटिश सरकार के दिए हुए इनाम के तौर पर एक जागीरदार के कब्जे में था। अतः औरस पुत्र ना होने से उसको वापस लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार का है।
1: यह बात निर्वितवाद सिद्ध है कि झांसी का राज आश्रित है, वह स्वतंत्र राज कभी नहीं था। इतना ही नहीं किंतु टहरी का राज जितना स्वतंत्र माना जाता है उतना ही वह नहीं है। वस्तुतः झांसी टहरी का भी यह भाग है जिनको टहरी के प्रधान स्वामी पेशवा ने किसी एक सूबेदार को सौंप दिया था। और साथियों अब चर्चा चूंकि बहुत हो चुकी है और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं, और झांसी का वृत्तांत जो है काफ़ी बड़ा है और ऐसे वृत्तांत को सुनने का मजा ही कुछ और है। तो साथियों इस बात को ज़रूर मानिएगा कि जो हम बात बता रहे हैं

0: वास्तव में पिछले जो हमने देखी भी नहीं, हमारे पुरखों ने भी नहीं देखी, वो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर रहे हैं।
1: साथियों, इसमें मानते हैं कि कुछ गलतियां भी जरूर होंगी, तो आप उन गलतियों को नजरअंदाज कर शब्दों पे ना जाकर भावनाओं पे जाने का प्रयास करें। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आज का ये कार्यक्रम का तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बातें आपको समझ में आई, हमें जरूर लिख दीजिए हमारे इस पते पर या फिर हमारे फोन नंबर पर। हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा के पास ओरछा।
1: साथियों, हमारा मोबाइल नंबर है
0: 92 19 20 77 49।
1: आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की से जाने की दीजिए हमें इजाजत।
0: आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है, सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और पाएं भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी है ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जे किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

गईती का धनिया डारी किते कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक बढ़क होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता? दोस्तों यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणु, झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल, बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है।

इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय। दोस्तों, जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए। इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है। वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 जी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नत्रजन, स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 4, 0 से 5 प्रतिशत यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने

होने की संभावना रहती है, वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों अब एक क्रम में अपन और कह रहे हैं कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में दित और आनो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतनी समापन होबे को समय हो गया है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में, एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गावो बजावो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, एक के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते वो त्यौहार भी अपनो आ रहा है, बिल्कुल नियरे आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुना थे एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो लें। तो दोस्तों, आप सुनते हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

0: मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों कितनों प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करत हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलत हैं ये छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे
0: हाँ
1: पहले के तो होता थे पहले से
0: भजन जी होता थे आपके से
1: हाँ।
0: अच्छा तो आपने वहीं से सीख लो जो
1: पहले बैठा था डाटा
0: दूर
1: गुस्सा ना हो पाए
0: हाँ।
1: और फिर उन्होंने कही कहा तो मैं सीख नहीं हमने हाँ
0: सो
1: उन्होंने फिर बजवाओ गवाओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है जो
1: जब हुए हम 15-16 साल के
0: 15-16 साल के हाँ। तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती।
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन तो आप उनके करके उनके बैठन लगाते
1: हो
0: तो जो भजन का डेली होते के कहूँ कहूँ होते ऐसे
1: पहले तो जैसे व्यायामी करेंगे आदमी अन्य
0: हाँ
1: बैठ गए रोज ही होते पहले तो।
0: अच्छा
1: अगर और रिश्तेदार आ गए तो कही आज आज होने होने हैं।
0: अच्छा
1: सुबह अच्छी ले लगी
0: हाँ फिर तो मैं ले बढ़त गए फिर तुमने सबसे पहला कहा गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो गए बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई
1: हमने गाओ कछु नहीं
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ
0: हाँ सो हमने उठो संगे लो
1: आपने कहे कि हम तुमको बोलो

0: तो गावे वाले ने उठा दो, फिर अब तुम साइड में बोलो।
1: पहले छेड़ बसई को एक दूसरे से हो, फिर उन्हें सके पे जा गाने तो नहीं आओ
0: हो
1: सुनने के सुनाओ।
0: हां
1: तो फिर ऐसे ऐसे गावो
0: तो ये सीख गए,
1: सीख गया सब चाहे थे पार्टियां में चले जा।
0: अच्छा अच्छी बात है, देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सब
1: हो, लगन से
0: है कि जब जिगर जी आदमी की
1: हमें एक लगन है कि आप आए पे हम एक साल घर ही नहीं रहे।
0: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो
1: हां घर नहीं आए,
0: एक साल आप घर नहीं आए, फिर कहां गए थे आप?
1: मारे जो सिखाओ तो संग रहे आप ले जाए।
0: अच्छा आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ, लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा, हमें शिकायत चाहना हमें कछु नहीं सीख रहे, हमें तो घर है
1: नहीं के इधर रोटी खाई हमने।
0: अच्छा
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा को गाओ तो आपके तो जो ऐसे हते किसके संग सीखते
1: चा से हते परिवार के?
0: हां
1: तेरा लाल कुशवाहा गुजर गए अब।
0: अच्छा
1: बे हां गुरु की हती
0: तो बे गाओ थाते सारंगी बजाते का
1: हो सारंगी
0: तो बे गाओ तो सारंगी बजाते तो तुम तो फिर उन्हीं के संग लग गए
1: बस
0: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हते जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी भाई 18 साल में।
0: 18 साल में तो देखो आपको जब लगन लगी, लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु, आपको तो अपनो मंजिल दिखा रही थी कि हमें जो काम करने वो करने,
1: हमें सीखने सीखने गाओ बजाओ
0: है। तो देखो एक लगन हो जी
1: अबे अपनो साजबाज बूढ़े पानो अबे रखे हम अपनो।
0: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे वाओ?
1: इसमें सारंगी है, खंजड़ी है, जे झाने है।
0: अच्छा
1: झीका है,
0: झीका है, जे चीजें बजाते हैं ये आपके। तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जी अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीका से,
1: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी ले
0: काउ पे मड़वा भी जाऊते नहीं है और को मड़ पाउते नहीं के नहीं जैसे के खुद ही मड़ नहीं आउती जी तो
1: नहीं हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा रहा हमें।
0: अच्छा
1: हां गुरु जी ने
0: हां
1: गावो बजावो और बनावो सब
0: के अगर जब फूट जाए तो यही से मड़ लो
1: मड़ लो।
0: अच्छा काय से मड़ता अगर फूट जाए तो
1: जैसे जे बकरा की खाल है बकत जा की
0: हां
1: वो जाता जाना पड़ जाए गोवा मिल जाए।
0: अच्छा
1: सो गोवा की बढ़िया बोला
0: हां
1: वो इतने की दाल बांट के।
0: अच्छा
1: वो उसे घेरे से लगा दो
0: हां
1: वो कढ़ाई बना के जो जो जागी रस्सी की
0: हां
1: वो दो तीन आदमी तेरे को चढ़वा दे डांट के।
0: अच्छा
1: दूध ना चढ़ियन दे
0: ले साहब तो इखो फेविकोल भी नहीं चाने।
1: हां हां फेविकोल तो फेरे वो इधर ही आगे सामने।
0: अच्छा जयते के ज्यादा काम करत
1: हम।
0: चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने का कोत के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संग लगे रहे
1: हो लगाई जा मेरे को
0: है
1: देना भाई काम का घर करो रात हाँ। उन्हीं के संग कर गए।
0: अच्छा घर से कोई मतलब हाँ। नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके रुक
1: रुकते ही
0: है
1: ये दागा हो
0: हां
1: हम नन्ना गए लो आवे।
0: अच्छा किए लो आवे गए
1: हमारा घर अंजन
0: बहु खूं
1: हो
0: हां
1: सो हां भज्जी बोले के काय तो ये तो आ तो जाना नहीं भजन में
0: कते कते घरे आ गए
1: कते कते कते तो नहीं जाने।
0: हां
1: ए हमने जाना तो है
0: हां
1: ए बोले माने जाने।
0: हां
1: ओ अपना लगाओ सावन
0: हो
1: ओना ना लवाई के नहीं आप हमारे संग भाग गए
0: ले साहब
1: तीन दिन में लौटे थे।
0: ओहो तो जे तो जब की बात है जब आपको जब लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आजकल के नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे हैं। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाऊ थे। और दोस्तों एक के संगे अगर आप और भी गाऊ थे बजाऊ थे और अपनी बात को हम तक रखवो चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है ई प्रकार से 0775584111। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाऊ थे जो देते हैं और जा विधाकों भी गाऊ थे। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर करवे के लाने और साथियों तक पहुँचावे के लाने और आदमी के सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाऊ थे। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितनों बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद रहो है। और दोस्तों, ये गीत को गाए थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों, भगवान दास जी के देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बड़ा उत्साह है। कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारे से गीत को।

बिल्कुल साथियो, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन माँ विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितनो प्यारा जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो होमा। देखो दोस्तों, कितनो प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गए है। तो अपने दोस्त को दे ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: गलियों गलियों फिरता हूँ।
1: कब से?
0: जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने

0: बात सत्य है, नारियां नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी। और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सब दली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना, कल तलक तुम्हारा

बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, अरे बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

पद भेड़ में बिज गई आज या थानू में लटकी ठाणी ए ठाणे अप थाने अपनी लई ठाणे।

abanico da cor. पानी को रखो संभाल जो चाहो जिंदगानी में, कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।

0: देखें आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी हो। कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।

0: लगी अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

बाप आगे देखे, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते। रहती अनपढ़।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

कहे नाथ काशी जो है सुख के राशि, कहे नाथ काशी जो है सुख के राशि, सुखी हो जहान

रही अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

você é